0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: அப் சமாச்சார் ஹோங்கே.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நவீன் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे. वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी. यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे. परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा. प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे. वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी. गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया. नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की. इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे. इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है. श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है.
3: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा. सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा. तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे. कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे. भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है. इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे. इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा. लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है. अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए. अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया. इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे. ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को

பணிந்தாலே சொர்க்கம் வாழ்நாளில் வருமே நம் பக்கம்.

0: नमस्कार। कहते हैं सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छनकर आती है ना, तो अपने साथ उजरे कल की कुछ यादें और आने वाले कल की कुछ उम्मीदें लाती हैं। एक बेहद हसीन सुबह का सलाम आप सबको। मैं हूं आपका दोस्त नवीन सक्सेना और अपने साथ आज लाया हूं तन्वी खुराना को, और हम दोनों के साथ इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो का सबसे खूबसूरत कोना आज सवेरे।
1: Yes, absolutely. This is our wonderful program, News Magazine program, Aaj Savere, and we have a lot in store for all of you. Be it national or international news, Metro City updates, some historical information related to this particular day, that is 27th of June 2026, and much more. So good morning and a very warm welcome to all of you. And today is Saturday, so just want to wish you a very happy Saturday and a very happy weekend.
0: और आज की इस खुशनुमा सुबह में एक मखमली एहसास भी है तन्वी, क्योंकि आज का दिन जुड़ा है उस हस्ती से जो कहता है चुरा लिया है तुमने।

0: So with this beautiful song we are going to start aaj savere jahan desh videsh ki khabrein aapke shehar ka mausam mizaj aur khelon ka panna. सबसे पहले बात सेशल्स यात्रा की प्रधानमंत्री की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे. वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भी भाग लेगी.
1: In Venezuela, death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry in a statement said, as part of the operation, 2 Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft departed for Venezuela yesterday carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे. भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है.
1: Jammu and Kashmir Police have launched Project Hawkeye, a tech-based surveillance system to monitor the Amarnath Yatra route round the clock ahead of the pilgrimage starting from 3rd of July. Police, along with the CISF and BSF, carried out long-range patrolling in the Arnia border belt covering Rathna, Salehar, Chakjaktu and adjoining areas to strengthen border surveillance and deter anti-social activities. Security forces are carrying out mock drills and joint exercises across the region to test emergency response. In another round of security strengthening, forces conducted patrols, area domination exercises and vehicle checks in sensitive border and highway areas including Arnia, Bishna, Miran Sahib and parts of the Jammu-Srinagar National Highway. These measures aim to ensure the safe and smooth conduct of the Amarnath Yatra.
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ. इस श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी. अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित

0: कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत होगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस कार्यक्रम को आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। ये न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अगर आप इसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो कल सुबह ट्यून कर सकते हैं 9:10 पर।
4: And moving towards sports, in FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India had 7 different goal scorers in the match. Sukhjeet Singh and Harmanpreet Singh turned the tide against Pakistan with a goal each in the second quarter, before Hardik Singh, Jagraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal found the back of the net to add 4 goals in the third quarter. Dilpreet Singh hammered the last nail in the coffin in the fourth quarter, and India will now face England tomorrow.
0: और अब बात FIFA विश्व कप की। FIFA फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप ई में शीर्ष पर आ गया है। नॉर्वे राउंड 32 में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल इस अंतिम राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। वहीं इस समय उरुग्वे का सामना स्पेन से और कैबो वर्डे का सामना सऊदी अरब से हो रहा है। तो यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। और अब आपके शहर की खबरें। तो तन्वी कहां से शुरू कर रखी हैं?
4: Let's begin with Chennai. India has achieved a major milestone in clean energy with the inauguration of the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle using nuclear process heat. The facility set up at the Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam was inaugurated by the Department of Atomic Energy Secretary Dr. Ajit Kumar Mohanty. Developed jointly by Bhabha Atomic Research Center, BARC, and IGCAR, the plant demonstrates the use of nuclear energy for carbon-free hydrogen production. It will help improve the technology and support future large-scale commercial hydrogen production.
0: Baat Delhi ki. दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने कल एक फर्जी गैस कनेक्शन और डिसकनेक्शन धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के माध्यम से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन और जन कल्याण से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में किया गया यह समझौता अगले वर्ष आयोजित होने वाली ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय रेसलिंग प्रतियोगिता और ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी के संबंध में हुआ है।
4: And moving towards Bangalore, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has announced the full reopening of jungle safaris at Bandipur and Nagarhol National Parks after a technical committee approved regulated tourism based on the park's carrying capacity. The move is expected to promote ecotourism, create local jobs and also boost the economy while ensuring wildlife conservation. And some more news from Bangalore itself. The 5th edition of the Maharaja Trophy T20 tournament will begin in Hubli today. Shivmoga Yodhas will face Kalyani Bangalore Blasters in the first match, followed by Mysore Warriors taking on Gulbarg Mystics. Kalyani Bangalore Blasters currently lead the points table with 6 points from 4 matches.
0: Rukh karte hain Mumbai ka. महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने अधिकारियों और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य

0: के संविदा कर्मचारियों तक करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने को कहा है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए से कम है। इस प्रस्ताव में अन्य कम आय वाले श्रमिकों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि आगामी सभी प्रारंभिक परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। आयोग का लक्ष्य परिणामों की घोषणा 21 दिनों के भीतर करना और भर्ती प्रक्रिया को उसी वर्ष पूरा करना है।
1: And about Hyderabad, thousands of people took part in the annual Bibi Ka Alam procession on Yom-e-Ashura, marking the 10th day of Muharram and remembering the martyrdom of Hazrat Imam Hussein in the Battle of Karbala. The city saw prayers, religious gatherings and charity activities including food and drink distribution for the needy and visits to hospitals and old age homes by volunteers. Large crowds gathered along the route and smaller processions joined the main event. Officials and community members offered respects to the holy relic at various points. Police Commissioner V.C. Sajjanar also paid tribute near Char Minar. Police made strong security and traffic arrangements to ensure the event went smoothly.
0: बात कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों को अत्यावश्यक प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए आवश्यकता अनुसार साप्ताह अंत और सार्वजनिक अवकाशों पर भी कार्य करें। रोस्टर प्रणाली से कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित होगी और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों में भी इसी प्रकार के नियम लागू किए जा सकते हैं। तो ये थे आपके शहर की खबरें। तन्वी अब रुख करते हैं देश के उन शहरों की तरफ जहां आज आसमान खुद अपनी कहानी लिख रहा है।
1: So let's begin with Chennai. Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or even thunderstorm. The temperatures are expected to range between minimum of 29 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. Bangalore will experience a generally cloudy sky with moderate rain and the minimum temperature is expected to be 20 degrees while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Now Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 31 degrees Celsius.
0: और तन्वी दिल्ली मुंबई और कोलकाता की भी कहानी लगभग लगभग ऐसी ही है। दिल्ली की सुबह आज थोड़ी मेहरबान है। तपती धूप के बाद आसमान में मखमली बादलों का हल्का सा डेरा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह तो ऐसा ही है और ऐसा लगता है कि दिल्ली की सूखी सड़कों को और बहुत जल्द बारिश मिलेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 के आसपास रहेगा। मुंबई का रुख करें तो आसमान आज खुलकर बरस रहा है। समंदर में ऊंची लहरें और खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदें। मुंबई की सुबह पूरी तरह से रोमांटिक है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं अपनी छतरियां साथ ले जाना ना भूलें। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। हुगली नदी के किनारे धुंध की पतली सी चादर। कोलकाता में भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला और आज की सुबह शहर को एक पुराना विंटेज लुक दे रही है तन्वी, जहां पर नुक्कड़ पर चाय के कुल्लड़ से उठता हुआ धुआं मौसम को और हसीन बना रहा है। बहरहाल सुबह सुबह की चाय हम दिल्ली में भी दिल्ली के खुशनुमा मौसम में एक सिप में और तन्वी तो ले ही चुके हैं विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो हमने आज आपके लिए निकाले हैं और कुछ ताज़ा तरीन इतिहास के पन्नों में जब आप झांकेंगे वो हमने इतिहास चाय के चुस्कियों के साथ ही ढूंढा है ना तन्वी?
1: Absolutely, what a beautiful day and what a beautiful description by you, Naveen.
0: बहरहाल अगर आप कोलकाता में इस समय हैं तो then you will feel 27 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहेगा। और बातें इतिहास की, लेकिन उससे पहले आज का दिन क्यों है खास?
1: Absolutely, today is 27th June as we all know, but every year 27th of June is celebrated as Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day, that is MSME Day. And this day was established by the United Nations General Assembly, that is UNGA, to recognize the tremendous contribution of small businesses to local economies and global sustainable development goals. The theme for this particular year is empowering empowering MSMEs through innovation and sustainable industrial development that emphasizes strengthening MSMEs through innovation.

0: innovation, digital transformation and also sustainable practice.
1: और तन्वी, भारत में एमएसएमई अर्थव्यवस्था का एक वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीडीपी, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हें कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से समर्थन भी दिया जाता है। वहीं आज है वर्ल्ड पीटीएसडी अवेयरनेस डे, यानी पीटीएसडी जागरूकता दिवस, जो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। और ये एक गंभीर मानसिक स्थिति है जो किसी आघातपूर्ण घटना का अनुभव करने या उसे देखने के बाद व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसा अक्सर होता है तन्वी, अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा, अगर हिंदी का शब्द हम यूज़ करें तो बहुत भीषण एक्सीडेंट आपने देखा, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर होता, अगर मैं ऐसा होता, then I think this is called a post-traumatic history, जिसे कहते हैं stress disorder, और शायद उससे उभरने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की स्थिति आजकल चल रही है स्ट्रेस की, उसमें ये लोगों को बहुत आसानी से पीड़ित कर रहा है।
0: Absolutely, every person is different and we need to take care of ourselves. Either do yoga or meditate or do something or the other, engage yourself and be happy. Just make sure that nothing gives you stress or anxiety. Your depression, stay away and stay yourself, keep yourself calm.
1: Stress, anxiety and depression, इन तीनों से निकलने का एक ही रास्ता है, योग and meditation. बहरहाल चलिए अब इतिहास में कुछ और पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज का दिन क्यों खास है।
0: Let's begin with the year 1898 when Canadian sailor Joshua Slocum successfully completed the world's first solo circumnavigation of the globe, arriving in Nova Scotia after a historic 3-year sea journey.
1: आज के दिन सन 1923 में विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई थी, जब कैप्टन लॉवेल एच स्मिथ और लेफ्टिनेंट जॉन पी रिक्टर ने दो DH-4B द्विपंखी विमानों के बीच हवा में पहली बार सफलतापूर्वक ईंधन भरकर लंबी दूरी की उड़ानों को एक नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया था।
0: In the year 1940, after 6 years of using the Soviet 6-day calendar, the USSR returned to the Gregorian calendar and officially restored Sunday as the weekly day of rest.
1: 1954 आज ही का दिन सोवियत संघ ने मॉस्को के पास ओबेंस्क में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आधिकारिक तौर पर शुरू किया था, जिसने नागरिक ग्रिड को बिजली की आपूर्ति की थी।
0: In the year 1967, the world's first electronic automated teller machine, which we commonly known as ATM, was officially installed and opened to the public by Barclays Bank in Enfield, London.
1: वैसे तन्वी, वो दिन भी क्या खूब रहा होगा ना 1967 में, जब लोगों ने मशीन से पैसे निकलते हुए देखे होंगे।
0: Absolutely a revolution that came.
1: और अब ये इतना आसान और इतना कॉमन हो चुका है कि शायद लोगों ने बैंक जाना छोड़ दिया है। 2008 आज ही के दिन 22 वर्षों के गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय खेल करियर के बाद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने आधिकारिक रूप से फिडे रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 का स्थान हासिल किया था।
0: That also was a very proud day for all the Indians and for all the chess lovers.
1: बिल्कुल।
0: And in 2015, based on the discovery of British scientist Robert Edwards, an international medical guideline was issued to make the world's first test tube baby, that is IVF, which is commonly known as in vitro fertilization technology, safer.
1: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं और जिन्हें हम याद कर रखे हैं। सबसे पहले बात शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। आज के दिन 1839 में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा था। शेरे पंजाब क्यों कहते थे? क्योंकि वो एक ऐसे राजा थे जिनकी केवल एक ही आँख थी, लेकिन खौफ ऐसा था कि अंग्रेज उनके जीते जी कभी पंजाब की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। और कहते हैं कि लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर उनके मुकुट की शान था।
0: Absolutely. And the next person in our celebrity list is Helen Keller. I'm sure each and every one of you has heard this name, Helen Keller. She was not just an American author, she was not just a political activist or a lecturer. She was much more than that. She was also a disability rights advocate. Born in West Tuscumbia, Alabama, she

0: writing, which was new for her and for her parents as well. And after an education at both specialist and mainstream schools, Helen Keller attended Radcliffe College of Harvard University and became the first deaf-blind person in the United States to earn a college diploma. We have a portion of her speech that was reenacted by Anne Sullivan, and this is when she was honored in 1925. So let's just hear a portion where she herself is talking.
1: Dear lions and ladies, I suppose you have heard the legend that represents opportunity as a capricious lady who knocked on every door but once, and if the door isn't opened quickly, she passes on never to return. And that is as it should be. Lovely, desirable ladies won't wait. You have to go out and grab them.
0: Helen Keller, she has written 14 books and hundreds of speeches and essays on the topics ranging from animals to even Mahatma Gandhi. And since 1954, it has been operated as a house museum and sponsors her own birthplace, and an annual Helen Keller Day is also celebrated.
2: और अब बात करते हैं हमारे आधुनिक भारत के सबसे बड़े रॉक स्टार सैनिक फील्ड मार्शल सैम बोनेकशॉ की, जिनका आज ही के दिन 2008 में निधन हुआ था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले सैम बहादुर जितने जांबाज थे, तन्वी उतने ही हाजिर जवाब थे। जब उनसे युद्ध की तैयारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीना तान कर कहा था, आई एम ऑलवेज रेडी। उनकी इसी बेबाकी और बहादुरी के किस्से आज भी हमारी सेना की रगों में जोश भरते हैं। हिंदी फिल्म भी उन पर बन चुकी है, उसी के एक डायलॉग हम आपके लिए लेकर आए हैं, सुनते हैं।
3: याद रहे हम सोल्जर्स हैं, जंग में नजर सिर्फ दुश्मन पर, किसी के माल असबाब पर नहीं। मेरा एक भी सोल्जर किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाएगा। सोल्जर से पहले हम जेंटलमैन हैं। आज मैं आप सबको गौर से देखने आया, आप सबको सल्यूट करने आया। लड़ाई के बाद शायद आप में से कुछ चेहरे ना दिखे। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा।
0: And today is the birthday of Tobey Maguire. I think you must be wondering who this particular person is. So let's tell you.
4: Who are you?
5: You know who I am.
4: I do.
5: Your friendly neighborhood Spider-Man.
0: You heard it. He is the Spider-Man. He is the Spider-Man, the actor and the film producer. He was there in the Spider-Man 1, Spider-Man 2, 3 and even the Spider-Man No Way Home. Not just that, you must have seen him in The Great Gatsby, Brothers, The Good German, Seabiscuit and much more. Let's hear a portion of his interview.
6: I think I can especially relate to Spider-Man because I feel like a superhero in general in my life. And I think he's a great character, and then one of the main themes, which is with great power comes great responsibility. Every day that I wake up, I have a responsibility to myself and to others.
2: तन्वी, आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि आज जन्मदिन है उस फनकार का जिसने हमें मोहब्बत को महसूस करना सिखाया। संगीत के दीवानों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज जन्मदिन है उस जादूगर का जिसने भारतीय संगीत को रॉक, पॉप और जैज का तड़का दिया। बात राहुल देव वर्मन यानी पंचमदा की, जिन्होंने धुन को एक नया सलीका दिया, नया मिजाज दिया। बहुत से गीत हैं जो उन्होंने कंपोज किए हैं, किसको भूलें किसको याद करें समझ नहीं आता। हालांकि मौसिकी उन्हें विरासत में मिली थी, पिता एसटी बर्मन बहुत बड़े संगीतकार थे। लेकिन आज इस हसीन सुबह को और भी खुशनुमा बनाते हैं पंचमदा के बहुत चुनिंदे हुए गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक मैट्री बनाई है और उम्मीद करते हैं आज ही आपका दिन जरूर बना देंगे।

0: यादों का कारवां, मौसम की नजाकत, पंचमदा के सुर, नितिन मुकेश की आवाज, उम्मीद है आज की सुबह आपके दिल को छू गई होगी। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही।
1: Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: नमस्कार।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से

0: कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நேர்களின் 100.1 எஃப்எம் கோல்டில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு அரங்கிசையில் வரலட்சுமி ஆனந்தகுமார் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். டாக்டர் எம் நர்மதா அவர்கள் வயலின், சேர்த்தலை ஆர் அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம். நூறு புள்ளி ஒன்று எஃப்எம் கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के

0: गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबूवेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबूवेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement ahead of his 3-day visit to Seychelles, Mr. Modi said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared diplomatic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of

0: साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों की व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
0: परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होने पर इसके गंभीर परिणामों का पता चलेगा। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अमरीका के हवाई हमलों के जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल-फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान माकूल जवाब देने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्लाह को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने

0: इस शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 963 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 672 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार में वृद्धि होने से आई है। भारत में सोने का भंडार 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 107 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर रहा। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में पहुंच गया। इससे पहले ग्रुप आई में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर रहा। नॉर्वे 6 अंक के साथ अगले राउंड में पहुंच गया। सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से कल मुलाकात की। श्री प्रधान ने बताया कि चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी। मृतकों की संख्या 920 हुई। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी. हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे. आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी. श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं. लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा.

0: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए. श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं. प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं. श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है. विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है. श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया. फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है. श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है. उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है. श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है.
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है. दूसरा, सारथी का सम्मान हो. वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है. आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर.
1: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं. पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं. इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी. पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे. मामले की जांच जारी है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ

0: Lines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a three-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास

0: परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को

0: एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी चेन्नई, नेरम 2:30।

तुझको ले जाएगी क्लब डिस्को में डांस करने कहेगी कहेगी बेबी टेक मी फॉर अ लॉन्ग ड्राइव रोमांस करने रोज रोज तुझको ले जाएगी क्लब डिस्को में

0: नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर श्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इससे पहले प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया है। इसकी पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। इसके लिए रीवा के किसानों को ₹150 प्रति किलोग्राम का मूल्य मिला। ये मूल्य स्थानीय बाजार भाव से अधिक है। देविका सिहाग, कितांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Zimbabwe.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में चेयर प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समेकित वेतन रहेगा 2,00,000 रुपए प्रतिमाह। निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम और शर्तें, सेवाएं और अन्य विवरण के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक रिक्तियों की संख्या 1, कनिष्ठ तकनीकी सहायक क्वालिटी 2 रिक्तियां, कनिष्ठ अभियंता सिविल 1 रिक्ति, सहायक CAMO 2 रिक्ति, सहायक 1 रिक्ति, स्टेशन इंचार्ज 2 रिक्तियां तथा प्रशिक्षु तकनीशियन ट्रेनी तकनीशियन 13 रिक्तियां। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए देखिए पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट www.pavanhans.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर टैब पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू और कश्मीर आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। TGT अंग्रेजी 2 रिक्तियां, TGT विज्ञान 1 रिक्ति, TGT गणित 1 रिक्ति, बढ़ई 1 रिक्ति और इलेक्ट्रीशियन 1 रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। प्रशासनिक या नीतिगत कारणों से रिक्तियों को बढ़ाने, घटाने या रद्द करने का अधिकार स्कूल प्रशासन के पास है। आवेदकों को इसके लिए कोई औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। सैनिक स्कूल नगरोटा सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक आवासीय स्कूल है। पशुपालन और डेयरी विभाग आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए रिक्तियां। पशु पोषण विशेषज्ञ 1 रिक्ति, भर्ती की पद्धति रहेगी प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और बायोडाटा प्रोफॉर्मा आदि देखने के लिए आवेदक पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं जिसका पता है dahd.gov.in। आवेदन इस पते पर भी भेजे जा सकते हैं। सुश्री अनामिका निगम अवर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग राइट स्टिल्ट फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग जनपथ नई दिल्ली 1। ईमेल आईडी है anamika.edu.nic.in। बुनकर सेवा केंद्र वीवर्स सर्विस सेंटर खानापारा गुवाहाटी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कनिष्ठ बुनकर 10 पद, कनिष्ठ छपाईकर 3 पद, कनिष्ठ सहायक बुनाई 3 पद, कनिष्ठ सहायक प्रसंस्करण 2 पद और परिचारक बुनाई 7 पद तथा बढ़ई 4 पद। इन पदों के विरुद्ध भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, चयन के समय सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नोटिस को रद्द करने का या सुधार का भी अधिकार है। योग्यता आयु सीमा चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रपत्र के बारे में देखिए वेबसाइट पर जानकारी। वेबसाइट का पता है www.handlooms.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे। Well, Karishma was telling us about the last segment of the program where we pay our tributes to the personalities who made a difference. So in that particular section, listeners, we will be remembering the man who made music magic. Well, more on that later in the show. In about 20 minutes, actually. Mm. And we also have a selection of news. Our discussion segment, Dateline India, we will be discussing two topics, not just one, but two topics today, and other reports and capsules as well. Let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles for a three-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's vision Mahasagar.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारी में से एक मानता है, दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं।
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat.
0: तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन।
1: IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days.
0: और FIFA फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा।
1: Well, listeners, this is our discussion segment, Dateline India. So let's begin with it. Well, I want to begin with the question, what comes to your mind when someone talks about building a strong economy? Well, I'm sure, it was a rhetorical question, it must be massive factories or maybe corporate headquarters or rather towering scrapers. Well, certainly they matter a lot. And I'm not denying the fact that that fact, but what if I told you that some of India's biggest economic success stories begin in places much smaller, in a village workshop or in a family-owned enterprise or maybe in a tiny manufacturing unit? Well, think about it.
0: बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, और हर मोहल्ले में एक ऐसा भरोसेमंद दर्जी होता है जो हमेशा समय पर काम पूरा करता है। और हमारे इलाके की उस पसंदीदा मिठाई की दुकान के बारे में भी जरा सोच लीजिए, जिसके बारे में हर कोई घर आने वाले मेहमानों को बताता है क्योंकि पीढ़ियों से उसका स्वाद वैसा ही बना हुआ है।
1: एंड जस्ट टू ऐड देयर, perhaps a young entrepreneur who started selling handmade products online and now delivers across the country. Well, individually, they may seem like small businesses, but together, they form one of the strongest pillars of India's economy. Well, these are India's micro, small and medium enterprises, which we better know as MSMEs.
0: और हर साल 27 जून को यानी आज दुनिया भर में यूएन एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों एमएसएमई उद्यमों का जश्न मनाने के लिए है जो अर्थव्यवस्थाओं को जमीनी स्तर से मजबूत बनाते हैं। दुनिया भर के कुल व्यवसायों में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने, वैश्विक रोजगार का 60-70% हिस्सा पैदा करने और दुनिया के जीडीपी में आधी तक का योगदान देने वाले एमएसएमई आर्थिक विकास, इनोवेशन और आजीविका की रीढ़ हैं।
1: Of course, true. The United Nations designated June 27th as MSME Day in 2017, of course, recognizing their vital role in achieving sustainable development. So today, these MSMEs, they are doing far more than running businesses. So they are contributing a lot and they are actually creating jobs, preserving traditional crafts as well.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वे इनोवेशन को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, और इसके अलावा अनगिनत सपनों को हकीकत में भी बदल रहे हैं। कई मायनों में भारत के एमएसएमई की कहानी भारत के बदलाव की कहानी है।
1: सो करिश्मा, वन स्मॉल आइडिया बिकम्स

0: employment for many. And one enterprise transforms an entire family. This is how actually real economic growth in reality spreads. And as these enterprises continued to grow, India recognized that they needed greater support. That's why the definition of MSMEs was revised last year, giving businesses more room to expand while continuing to enjoy policy benefits. After all, success should never become a reason to lose support. Instead, growing businesses should be encouraged to dream even bigger. Well, in the year 2025-26, this happened exactly, and it became a landmark year for India's MSME ecosystem. More than 8.7 crore enterprises registered through the Udyam Registration Portal and Udyam Assist platform, bringing millions of businesses into the formal economy.
1: बिल्कुल और छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंस या लोन मिलना अक्सर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहता है. सोचिए कि आप अपनी वर्कशॉप को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन लोन के लिए महंगी गारंटी या गिरवी रखने के लिए कोई भी चीज नहीं दे पा रहे. बहुत सारे उद्यमियों के लिए यह एक आम समस्या रही है. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को मजबूत किया.
0: And how did they did it exactly? Well, they increased the ceiling from 5 crore rupees to 10 crore rupees. So collateral free loan guarantees, they were expanded. India's traditional industries are also writing remarkable success stories. We'll tell you about it with an example. Well, if we consider khadi as an example, once seen mainly as a symbol of India's freedom movement, today it has become a symbol of sustainable growth and rural entrepreneurship. Don't you think, Karishma?
1: बिल्कुल. और खादी और ग्राम उद्योग की बिक्री 1,27,000 करोड़ रुपए के शानदार आंकड़ों को पार कर गई है. अच्छा शासन सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है, यह तब समस्याओं को हल करने के बारे में है जब लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. उत्पाद बनाना तो बस आधी यात्रा है, ग्राहकों को खोजना भी उतना ही जरूरी है. सरकारी खरीद को बढ़ावा देने वाली पहलों और एमएसएमई उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों उद्यमों को ज्यादा पहचान मिल रही है.
0: एंड करिश्मा, एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री डिस्प्लेड देयर प्रोडक्ट्स, एंड दिस वाज डन अंडर द इंस्पायरिंग थीम ऑफ वाइब्रेंट एमएसएमईज विकसित भारत. And this was made even more special, well, with more than 2/3 of the participating stalls, they belonged to women entrepreneurs.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, कई अन्य लोगों ने एससी एसटी और दिव्यांग उद्यमियों का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि सच्चे विकास का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को सफल होने का मौका मिले. हर सफल उद्यम के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पीएम विश्वकर्मा है, जो भारत के पारंपरिक कारीगरों के लिए समर्पित एक योजना है.
0: So carpenters, blacksmiths, basket makers and many other artisans, they are receiving skill training, affordable credit and digital support. And if we talk about rural India, northeast region, first generation entrepreneurs, women-led enterprises and even modern startups, the journey of India's MSMEs is becoming increasingly inclusive.
1: और जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, MSME की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है. हर सफल उद्यम की शुरुआत एक साधारण सपने से होती है, एक ऐसा सपना जिसे कड़ी मेहनत से सवारा गया हो, जिसे अवसरों का साथ मिला हो और जो इनोवेशन से मजबूत हुआ हो, और इसके साथ ही जिसे आम भारतीयों के दृढ़ संकल्प से ताकत मिली हो.
0: सो ऑर्डिनरी इंडियंस डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, व्हेन मिलियंस ऑफ सच ड्रीम्स दे कम टुगेदर, दे डोंट जस्ट बिल्ड बिजनेसेस, दे बिल्ड एन एंटायर नेशन. एंड परहैप्स दैट्स द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ इंडियाज एमएसएमई स्टोरी. नो ड्रीम इज एवर टू स्मॉल व्हेन इट्स बैक्ड बाय द स्पिरिट ऑफ इंडिया. हाउ ग्रेट. नाउ वी मे प्रोसीड. Today it's also International Day of Deaf Blindness.
1: तो श्रोताओं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी बिना ठीक से देखे या सुन पाए दुनिया में चलने फिरने की कोशिश की हो कभी आपने? अब सोचिए कि अगर दोनों ही क्षमताएं चली जाए तो क्या होगा. दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए यह हकीकत है. डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता केवल अंधेपन और बहरेपन का योग नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय और बेहद जटिल संवेदी विकलांगता है.
0: So it is a disability with its own challenges, where vision and hearing cannot compensate for one another, making everyday communication as well as mobility, education and even the simplest activities and interactions incredibly difficult.

0: They'll imagine not being able to hear your loved one's voice or see their smile, and other people, birds, animals,
1: बिल्कुल बिल्कुल. और शगुन ज़रा सोचिए कि आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको पता चलता है कि दुनिया आपको समझने के हिसाब से बनी ही नहीं है, तो आप कैसे बातचीत करेंगे? जो लोग सुन और देख नहीं सकते, उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट उनकी विकलांगता नहीं होती, बल्कि उनका अदृश्य होना होता है, क्योंकि सुनने और देखने की अक्षमता को अक्सर एक अलग ही विकलांगता के तौर पर नहीं पहचाना जाता. इसलिए अनगिनत लोग नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों और यहाँ तक कि सरकारी आंकड़ों में भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं.
0: Well, yes, when you're invisible in the system, access to education, healthcare, employment and essential services becomes an uphill battle. But inclusion begins with recognition. So recognizing them, the United Nations declared June 27th as the International Day of Deaf Blindness, and this date, it actually marks the birth anniversary of Helen Keller, an extraordinary author, educator, global advocate. Well, we know her for her timeless. She has been a timeless symbol of courage, resilience and determination. So despite being deafblind, Helen Keller broke barriers through education and unwavering perseverance, inspiring generations across the world. So, and she also proved that deafblindness does not define a person's potential.
1: और उनकी ज़िंदगी इस बात की एक मिसाल बन गई कि जब समाज रुकावटें खड़ी करने के बजाय उन्हें हटाता है, तो संभावनाएं असीमित हो जाती हैं. असल समावेश का मतलब सिर्फ ऐसी जगहें बनाना नहीं है जहां आसानी से पहुंचा जा सके.
0: Exactly, Karishma. It's about ensuring that no one is unseen, no one is unheard, and no one is left behind. So listeners, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe. Run by Ambikapur Municipal Corporation, the cafe offers meals in exchange for plastic waste. And in this program, we speak to Ritesh Saini, in charge of the Garbage Cafe.
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए. हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं. विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहाँ तक पहुँच गया. सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए. प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है.
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
0: To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 PM. You can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
1: और श्रोताओं, समय है अपनी क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: सो करिश्मा, विल हेड टू कोड़ीकोड फर्स्ट. वेल, आई वांट टू बिगिन विद दिस. ड्रग्स एक्चुअली, दिस आइडिया एक्चुअली, ड्रग्स डोंट जस्ट डिस्ट्रॉय लाइफ, दे थ्रेटन द फ्यूचर ऑफ एन एंटायर जनरेशन. आई एम श्योर एवरीबडी वुड अग्री विद मी. फ्रॉम स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन, द बैटल अगेंस्ट नार्कोटिक्स इज गैदरिंग मोमेंटम. With the center and states working in close coordination, anti-drug operations are being intensified across the country, and Kerala's Operation Tufan is emerging as a key example of this united effort. Let's find out more details now.
5: The central and state governments are taking strong steps across the country against narcotics that are destroying the new generation. The International Anti-Drug Day was observed on June 26 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi's government to focus on accelerating the fight against narcotics. The Narendra Modi government has adopted a zero-tolerance policy against drugs. Operation Tufan, which is being implemented in Kerala, is strengthening the fight against narcotics. The state government has formulated a plan to suppress the mafia gang by detecting all drugs products, including chemical drugs, crossing the border. Special squads and investigation teams of the police and excise have been formed in each district as part of this. The investigation team is keeping a special vigil to prevent drugs sales by focusing

0: on schools, colleges and universities. Operation Tufan is being implemented by bringing together everyone, including teachers, parents, public representatives, political parties and voluntary organizations. As part of this, Minister Ramesh Chennithala is traveling all over Kerala and turning prominent individuals into Operation Tufan warriors, especially in the border areas of Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Malabar. The investigation teams are paying special attention to seizing the drugs that the drug mafia operating in Bengaluru is trying to smuggle through luxury cars, buses and other vehicles. The other day, a pledge against drugs was organized in schools in each assembly constituency under the leadership of MLAs. After the announcement of Operation Tufan, 417 cases were registered in Kozhikode district alone till June 25th and 422 people were arrested. 2,954 cases were registered in the state. 3,176 people were arrested with narcotics. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
1: और बढ़ते आगे बात करते हैं मुंबई की. महाराष्ट्र में बारिश के मौसम में पानी की बूंदों के साथ ही उमड़ता है भक्ति का सैलाब. लाखों वारकरी मन में विठोबा से मिलने की आस को लेकर पंढरपुर का रुख करते हैं. पूरे महाराष्ट्र सहित आसपास के इलाकों से विभिन्न संतों की पालकियां आषाढ़ी वारी में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करती हैं. उन्हीं में से है संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन संत मुक्ताई की पालकी हाल ही में रवाना हुई. सुनते हैं ये कहानी हमारी मुंबई संवाददाता से.
2: विठोबा के नाम का जय घोष, तार और मृदंग की गूंज के बीच संत मुक्ताई की पालखी अहिल्यानगर जिले के मुक्ताई नगर तहसील के कोथड़ी गांव से पंढरपुर की ओर चल पड़ी है. लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये केवल एक डिंडी है. इसके बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं संत मुक्ताई संस्थान के अध्यक्ष रविन्द्र पाटिल.
3: इस साल 318 साल मुक्ताबाई का वारी का है. मुक्ताबाई की वारी यानी पालखी जो है इसका अनन्य साधारण महत्व है. ज्ञानेश्वर, सोपान, निवृत्ति, मुक्ताबाई ये चार भाई बहनों का जो उपदेश महाराष्ट्र में किया जाता है या उनका इतिहास उसका पुनर्जीवित किया जाता है. जो उन्होंने समाज के लिए उपदेश किया है ज्ञानेश्वरी के माध्यम से, उसी तरह से समाज में वारी का अनन्य साधारण महत्व है. महाराष्ट्र एक संत की भूमि है. हमारी संत मुक्ताई की पालखी पंढरपुर जाने के लिए 30 दिन लगते है. 600 किलोमीटर का प्रवास है. 5,000 वारकरी इसमें शामिल होते है. इस साल अनन्य महत्व ऐसा है. इसी संत मुक्ताई के लिए पंढरपुर जाने के लिए चांदी का रथ इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहब इन्होंने चांदी का रथ समर्पित किया है. उसके साथ मुक्ताई पंढरपुर में जा रही है.
2: वारी संत भूमि महाराष्ट्र की शताब्दियों से चली आ रही एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो विठोबा के प्रति वारकरियों के अपार प्रेम को तो दर्शाती ही है, साथ ही सभी भेदभावों को किनारे रखकर मानवता की पताका ऊंची रखने की सीख भी देती है. परिक्रमा के लिए राजेश यावलकर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे.
4: Now, let's head to Vijayawada. NTR district in Andhra Pradesh has earned national recognition with its innovative Ignite Cell, winning the prestigious SCOT Award for Excellence in Public Service and Citizen-Centric Governance. The award was presented at a function in New Delhi recently. Let's find out more details.
5: The Ignite Cell, which stands for Information for Growth through Nurturing Income Generating Innovation, Technology and Encouraging Entrepreneurs, was launched in line with the state government's long-term development vision. The initiative operates at the district collectorate and the aspirational blocks of Penuganchu Prolu and Ibrahimpatnam. A different government department runs the cell each day to create awareness about welfare schemes and development programs while providing guidance on financial assistance, technology, marketing and entrepreneurship. NTR District Collector Dr. Lakshmi Shah said, "The initiative has strengthened last-mile delivery of government services, promoted innovation and encouraged self-employment, reflecting NTR District's commitment to effective people-centric governance." The collector described the award as a recognition of the collective efforts of Team NTR District and congratulated officials for successfully implementing the initiative. He said the honor would inspire the administration to work with greater commitment towards achieving the goals of Swarna Andhra 2047 and Viksit Bharat. Allu Murli for Parikrama, Akashvani News, Vijayawada.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जहां मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है. अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला.

0: पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ था और पीटी उषा ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और 1980, 1984 तथा 1988 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1986 के सियोल एशियाई खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया।
1: Well, PT Usha, one of India's greatest athletes, often called the country's queen of track and field, a very happy birthday to her. Today, listeners, we're also remembering Josephine Cottle. We know her professionally as Gail Storm. Well, the singer and actress, after a film career from 1940 to 1952, she starred in 2 popular television programs of 1950s as well. The Gail Storm Show is one of this. And the track that you're listening to in the background is Teenage Prayer.
2: It's the answer to a teenage prayer.
0: और इसके साथ ही

0: Storm Show is one of this, and the track that you're listening to in the background is Teenage Prayer.
1: It's the answer to a teenage prayer.
2: और इसके साथ ही आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक नितिन मुकेश का जन्मदिन है. और आपको बता दें कि अपनी मधुर और भावपूर्ण गायकी के दम पर उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में विशिष्ट पहचान बनाई. 1970 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाले नितिन मुकेश ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, ख्याम पप्पी लहरी और नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद जैसे संगीतकारों के साथ काम किया और उनकी आवाज में रिकॉर्ड हुए कई गीत आज भी श्रोताओं के बीच हद लोकप्रिय है.

0: और इसके साथ ही तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अकिलन को भी आज हम याद कर रहे हैं। वे तमिल साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे और उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल है।
1: Well, today we're also paying tributes to R.D. Burman, the pluralist who redefined film music, fondly known as Pancham. Well, Pancham, the eminent musician and composer, brought together Indian musical traditions and Western rhythms in a distinctive style.
2: 27 June 1939, S.D. and Mrs. S.D. ko ladka
0: hua. तो आपको बता दें कि वे प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे और इसके साथ ही उन्होंने कई पश्चिमी और भारतीय संगीत का अनूठा मिश्रण दिया था।

और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ करिश्मा और शगुन चोपड़ा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: அரங்கிசையில் இதுவரை வரலட்சுமி ஆனந்த்குமார் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். டாக்டர் எம் நர்மதா அவர்கள் வயலின், சேர்த்தலை ஆர் அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம். தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं. हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है. श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की. प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है. प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे. इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है. विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा. गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ

0: आरंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05. ஆகாஷ்வாணி சென்னை 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசை நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கலாம். மாலை 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:00 ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள், 7:10 திரைகானம், 7:45 செய்தி அறிக்கை, 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 பழமைக்கு பல்லாண்டு நாடகம், எழுதியவர் எஸ்ஆர்ஜி சுந்தரம், 8:40 திரைகானம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 நேஷனல் சயின்ஸ் மேகசீன், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், நள்ளிரவு 12:10 பின் இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனிய ராகம், சதேஸ்வரி தேவி அவர்களின் தும்புரி இசை, தொடர்ந்து பண்டிட் குமார் கந்தர்வா அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். அதிகாலை 4:10 பொங்கும் மங்கலம், தல்லூரி வெங்கடேஸ்வரலு, தல்லூரி மலையாத்ரி ஆகியோரின் நாகஸ்வர இசை, கே ஸ்ரீனிவாசராவ் அவர்கள் தவில், 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசை, 7:25 திரை இசை, 7:30 ஆஜ் சவேரே செய்தி தொகுப்பு, 8:30 திரைகானம், 9:00 இசை பெட்டகம், சித்தூர் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். டாக்டர் டி லோகநாத சர்மா அவர்கள் உடன் பாடியுள்ளார். நெய்தி ஸ்ரீ ராமசர்மா அவர்கள் வயலின், எல்லா வெங்கடேஸ்வரராவ் அவர்கள் மிருதங்கம், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:00 மன் கி பாத். பிரதமர் நரேந்திர

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह वक्त है सदाबहार गीतों का और सदाबहार गीतों में आज आपके साथ है विभा। नमस्कार।

ये गीत आपने सुना साल 1965 की फिल्म मेरे सनम से रफ़ी साहब और आशा ताई की आवाज़ में, और अब सुनते हैं एक और दिलकश नगमा फिल्म आरजू से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: और अब सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नय्यां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयी करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अंतिमे जी समूहस्य द्वंद्वे एकम एकम इत्यंकांतरालेन समतावाप्य प्रथमतया फीफा विश्व कप स्पर्धायाः नॉकआउट इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। सामाजिक

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 44 44 2371 7106 or 2331 0481. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. आपके फोन हम सीधे कार्यक्रम में आपके सवाल हम शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कर सकते हैं 2331 4444, 2331 0481 और 2371 7106 पर. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011

0: भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: वेलकम शिशिर।
2: थैंक यू, नमस्कार।
0: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस रजिस्टर गेन्स फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक। US stock market indices edge lower and global crude oil prices tumble around 10% this week.
0: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए। अमरीकी शेयर बाजार में गिरावट और इस सप्ताह कच्चे तेल के वैश्विक दाम लगभग 10% फिसले।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए समझते हैं कि इस सप्ताह के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त देखी गई। इसका कारण आसान नजर आती भू राजनीतिक चिंताएं, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेश में बेहतरी है। घरेलू शेयर बाजार मिले जुले संकेतों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन करते दिखाई दिए, जबकि विस्तृत शेयर सूचकांक, खासकर अगर हम मिड कैप की बात करें तो इसमें थोड़ी बिकवाली का दबाव रहा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में प्रगति से भू राजनीतिक तनाव कम होते नजर आए और भारत अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ीं, जिससे निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ता नजर आया। हालांकि आईटी शेयरों में गिरावट और कमजोर मानसून की चिंताओं के चलते बाजार की चाल में सतर्कता नजर आई। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 298 अंक यानी लगभग आधा प्रतिशत बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43 अंक यानी लगभग 0.2% बढ़कर 24,056 पर बंद हुआ। विस्तृत शेयर बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 1% से अधिक की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं बात करें रुपए की तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 7 पैसे कमजोर होकर 94.40 रुपए पर बंद हुआ। श्रोताओं, आप चर्चा करेंगे, हमारे समक्ष शिशिर सिन्हा जी बैठे हुए हैं, मगर उससे पहले आइए लेते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल। ये है कोलकाता से, इनका नाम है अनिमेश। अनिमेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग मार्केट बोन सर।
1: गुड इवनिंग,
2: दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता। सर, एट प्रेजेंट द शेयर मार्केट इज राइजिंग एंड स्टॉक मार्केट इज बेटर देन लास्ट ईयर। शुड आई इन्वेस्ट नाउ और आई शुड वेट फॉर द टाइम फॉर मोर एप्रोप्रिएट सिचुएशन?
3: Animesh Babu, you will have to keep 2-3 things in mind. If you are coming to stock market for the first time, then the time is not so appropriate at this moment. If you are a regular investor, so my advice would be whenever there is a dip, there are a number of blue chip shares where the prices are low. You can go and take some small position in that. My only concern at this moment is that the what we call as a peace talk between US and Iran, there is still some concern, and that is also causing some kind of disruptions in the market. So when you are going to the market, please buy only a small quantity, not put entire money. And whenever there is an opportunity, whenever the market is on up, and if you are a regular investor, book profit in installment, invest in installment. That would be the right strategy at this moment.
0: Moving on, the major US stock indices settled lower yesterday. The Nasdaq Composite Index dropped 0.24% to close at 25,298.

0: Index registered its fifth consecutive losing session as investors rotated out of key technology stocks and into more defensive areas of the market. The Dow Jones Industrial Average dipped 0.1% to end at 51,876, while the S&P 500 dropped marginally to settle at 7,354. For the week, the S&P fell 2% and the Nasdaq lost 4.6%, while the Dow outperformed, registering a gain of 0.6%. So, Shishir, what happens in U.S. Markets generally mirrors across the world. We will talk about that after we have spoken to Amit Jha from Delhi. Amit, a warm welcome. Please ask your question.
1: हाँ नमस्कार सभी को
0: जी
1: सर सीना सर से मेरा प्रश्न है सर कि अब तो जो क्रूड ऑयल है वो 72-73 डॉलर के आसपास कर रहा है ट्रेड तो क्या अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे जो प्रेशर था दबाव था वो कम होगा सर और दूसरी चीज सर कि जो आईटी कंपनीज के बारे में है सर कि सेक्टरल वाइज देखा जाए तो आईटी कंपनी आज भी मतलब उतने दबाव में है चाहे वो एआई का इम्पैक्ट हो या क्लाउड का हो तो क्या इन सब चीजों से आईटी कंपनी हमारी कब तक उपाय क्योंकि अब तो विश्वास तो ही नहीं हो रहा कि हम स्टॉक खरीद कब कर रहे 30-40% नीचे हो गई है एक हमने धीरे धीरे करके जैसे 10-10 करके भी हमने एक क्वांटिटी ली उसके बावजूद अब लग रहा है कि पता नहीं ये पैसा हमने लगा दिया है ये आने वाले दिन में क्या रहेगा धन्यवाद सर
2: देखिए जो आपका पहला प्रश्न है तेल कंपनियों के ऊपर जो आपने कहा कि कच्चे तेल के भाव $72 प्रति बैरल पे आ गए हैं तो उनके ऊपर दबाव कम हुआ है निश्चित तौर पर दबाव कम हुआ है और एक आम आदमी के नज़रिए से अगर मैं आपके तरफ में मौजूद रहूं तो मैं यही कहूंगा कि दाम घटने चाहिए पेट्रोल डीजल के लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं बहुत सारे तथ्य होते हैं बहुत सारे कारण होते हैं जिसके आधार पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तय की जाती हैं एक और बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है उसकी जो व्यवस्था है उसको हम लोग इम्पोर्ट पैरिटी प्राइसिंग मैकेनिज्म कहते हैं इसको अगर बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँ कि जो पेट्रोल डीजल अगर हम वहाँ से आयात करें किसी भी देश से और वो यहाँ पर आकर के जो उसका भाव बनेगा उसी आधार पर खुदरा कीमत तय होती है दूसरा ये भी होता है कि रोज़ रोज़ के जो भाव में उतार चढ़ाव होता है उसके आधार पर आपकी खुदरा कीमतें बदलती नहीं हैं तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक अगर मैं आपके तरफ हूँ तो निश्चित तौर पर कहूँगा कि हाँ कीमतों में कमी करने का एक मौका है दबाव कम हुआ है और उम्मीद करनी चाहिए कि दाम घटेंगे आपका दूसरा प्रश्न आईटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है निश्चित तौर पर देखिए एक अजीब सी विडंबना देखिए कि पहले हमने कहा कि एआई आ रहा है इसीलिए आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है अब ये कहा जा रहा है कि एआई कंपनियों पर दबाव है इसीलिए आईटी कंपनियों पर दबाव बन गया है तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ बन गई हैं तो अब ऐसे में एक निवेशक होने के नाते आपने कहा कि मैंने किस्तों में थोड़ी खरीदारी करी है उसमें क्या करें 30-30%, 40-40% गिरावट आई है मुझे लगता है कि आईटी कंपनियों में थोड़ा सा एक समय हमें देना होगा मतलब आप कह सकते हैं 6 महीने से साल भर का परिस्थितियां शायद जैसे ही ये वैश्विक अनिश्चितता जो है उसमें और गिरावट आएगी तो आईटी कंपनियों में स्थिति बेहतर होने की हम उम्मीद कर सकते हैं
3: बिल्कुल शिशिर अपने अगले कॉलर को हम जोड़ते हैं प्रोग्राम में ये चेन्नई से है इनका नाम है काशीनाथ काशीनाथ जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
2: जी नमस्कार
4: मेरा सवाल ये है शिशिर साहब से
2: जी
4: कि जो बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन होता है उसमें मैं 5% अपना निवेश से 5% करना चाहता हूँ तो जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में जाकर के डायरेक्ट ऑफिस से करते हैं तो उसका ऑफिस वो कहाँ कॉन्टेक्ट करने से मैं महीना में 1,000 रुपया SIP करना चाहता हूँ बिटकॉइन में क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट बोलते हैं अपना पूरा इन्वेस्टमेंट का 5-10% बिटकॉइन में होना चाहिए तो इसके लिए मुझे थोड़ा इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा दादा
2: काशीनाथ जी मैं उन विशेषज्ञों से बिल्कुल ही खिलाफ जाके कहूँगा और वो कहूँगा कि बिटकॉइन में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एक ऐसा स्रोत है एक ऐसा माध्यम है जिसके आगे पीछे कौन है हमें कोई नहीं पता है कल होकर के अचानक उसके भाव में 40% की गिरावट हो सकती है और कल होकर के भाव 50% बढ़ सकता है तो एक लालच तो हर किसी को होता है लेकिन दिक्कत यह है कि वो है क्या कौन उसके पीछे है हमें नहीं पता है। तो जो कोई भी कहता है कि 5% भी लगाइए, मैं कहता हूँ पाँच

0: प्रतिशत ही मत लगाइए। जब आपके पास कई और दूसरे विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो डाकघर की जमा योजनाएं हैं, चाहे म्यूचुअल फंड का SIP हो, वहां पे आप जाएं, आप ETF में जाएं, बहुत सारे ETF आपके लिए अवेलेबल है, वहां पर आप लगाएं। आप इन जगहों पर लगाएं जहां पर मूल बचने की उम्मीद बनी रहे, ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर सूद तो छोड़िए मूल पे भी पूरी तरह से बट्टा लगे।
1: लीगल इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है,
0: बिल्कुल नहीं है। और देखिए, हमारे यहाँ बिटकॉइन जो है, जिसको हम लोग कर की भाषा में वर्चुअल डिजिटल असेट के नाम से जानते हैं, और वहां पर बहुत स्पष्ट है कि आप जैसे ही खरीदारी करते हैं या बेचते हैं तो आपको TDS आपका जो है वो 1% का है। उसके अलावा अगर आपने थोड़ी भी कमाई करी तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में हैं या नहीं हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके आगे पीछे कौन है हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे माध्यम में क्यों जाए जहां पर कोई नियम ही नहीं है। और रिजर्व बैंक बार बार आगाह करता है कि ऐसी मुद्राओं से आपको दूर रहना चाहिए जिसको तकनीकी तौर पर आप मुद्रा भले कह दें कि उसमें वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ स्टोरेज है, लेकिन उसके पीछे कोई आधार नहीं है।
1: जॉइनिंग अस फ्रॉम भोपाल, वी हैव शंकर विद अस। अ वार्म वेलकम शंकर।
2: थैंक यू सर। सर, ये मेरा सवाल है सीमेंट मिड कैप सीमेंट कंपनीज, मिड कैप सीमेंट कंपनीज के बारे में। हाउ इज देयर फ्यूचर? इनका प्राइसेस शेयर की ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे पड़ी हुई है, मोर और लेस, नॉट लार्ज कंपनी। और दूसरा थोड़ा सा बताइए, फर्टिलाइजर सेक्टर कैसा है अभी? उनके भी शेयर कोई ज्यादा नहीं चले, हालांकि ये ऑयल का इन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, स्पेशली सीमेंट पे। फर्टिलाइजर तो थोड़ा बहुत आता है प्रोडक्शन पे, लेकिन ऑयल का इस पे तो आता नहीं, सीमेंट पे। तो ये क्यों दबी हुई क्यों है, और क्या अभी अगले 6 महीने में इनका फ्यूचर अच्छा है, या फिर बिकॉज ऑफ अल नीनो कुछ प्रॉब्लम रहेगी सीमेंट सेल में भी? थैंक यू सर।
0: देखिए, सीमेंट का जो दो कारणों से हम थोड़ा भाव पे असर देखते हैं, एक तो जब बुनियादी क्षेत्र में यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर निवेश में बेहतरी आती है तो उसके शेयरों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये एक अजीब सी इस समय स्थिति देखने को मिल रही है कि जब सरकार इस साल 11.21 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश कर रही है, पूंजीगत खर्च कर रही है, उसके बावजूद सीमेंट के शेयरों में थोड़ी हमने गिरावट देखी है, थोड़ी क्या काफ़ी गिरावट हुई है कुछ खास शेयरों की बात करें तो। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो इस साल लगभग 10% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और ये अगर मैं 5 साल का CAGR उनका देखूँ, मुझे लगता है शंकर जी इस बात से वाकिफ होंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर भी बढ़ोतरी हमने करीबन 12% की देखी है 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। तो सीमेंट में मुझे उम्मीद काफ़ी बेहतर है। हो सकता है एक मोमेंट्री आप उसमें गिरावट देख रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मॉनसून के खत्म होने के बाद जब रियल इस्टेट की गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसके ऊपर उसका असर अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा आपका सवाल था फर्टिलाइज़र का। देखिए, फर्टिलाइज़र के दाम अचानक से कम हो गए हैं, बीच में काफ़ी भाव बढ़ गए थे ग्लोबल मार्केट में, जैसे ही चीन ने संकेत दिए उसके भाव औंधे मुँह गिर पड़े हैं। तो फर्टिलाइज़र को लेकर के, चूँकि उसमें हमारी आयात निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी मुझे मतलब कह सकते हैं कि आपको अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वहाँ पे अभी दबाव बना रहेगा।
3: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कृपया अपना सवाल पूछे।
4: जी नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि एक रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में किन किन एसेट क्लासेस का होना जरूरी है, यानी कि गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट, फिक्स इनकम, आपका इक्विटी, ये चारों में से क्या चारों का होना जरूरी है, या फिर सिर्फ 3 या 2 एसेट क्लास से ही अच्छा खासा पोर्टफोलियो रिटेल निवेशक बना सकते?
0: देखिए योगेश, ये उम्र के हिसाब से भी निर्भर करता है। जैसा कि अगर आप 30-40 के उम्र ब्रैकेट में हैं तो आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा हाई रख सकते हैं आप। फिर दूसरे नंबर पे आप फिक्स्ड असेट को, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट असेट को आप रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप सोना को रख सकते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट में क्या है कि रियल इस्टेट आमतौर पर एक बड़ा निवेश मांगता है और एक लंबे समय के लिए मांगता है। तो अगर ये 3 अगर आप देखें, जो मैंने आपसे कहा इक्विटी है, उसके बाद आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है, और तीसरा आपका गोल्ड है, तो अगर आप 40 से नीचे की उम्र में हैं तो 40-40-20 का आप रेशियो रख सकते हैं। लेकिन 40 के ऊपर आप जैसे जाएं इसको आप घटाते जाएं, यानी कि इक्विटी को कम करते जाइए, डेट को थोड़ा बढ़ाइए और गोल्ड में आप निवेश कम करिए। क्योंकि सोने को लेकर के स्थिति है कि सोना एक समय तक तो आपके लिए रिटर्न अच्छा दे देता है, लेकिन वहां पर आपके लिए ये भी ज़रूरत है कि जो मूल है उसको बचाए रखना, इसलिए आपको डेट इंस्ट्रूमेंट पर जाना चाहिए। और अभी देखिए, इस समय में सोने

0: भाव 1.65 1.70 तक चले गए थे और फिर वो घट करके 1.40 1.45 पे आ गए। सोने चांदी में भी यही स्थिति देखी। तो अगर 40 के नीचे हैं तो 40 40 20 का रखिए, और 40 के ऊपर जाएं तो इक्विटी में कम करते जाइए, डेट में आप बढ़ाते जाइए।
1: और भिले से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्ते मैडम, मार्केट मंत्रा को नमस्ते और सीना साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्कार
2: सर, अभी 2 हफ्ते पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से शायद आप ही की बातचीत हो रही थी, तो उसमें अपने FII और DII के, अपने मार्केट के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो FII और DII के बारे में बात करते वक्त उनका भी मैंने एक बार अप्रिहेंशन शो किया था कि कहीं हमारे DII जो है FII के हाथों खेल तो नहीं रहे हैं। लगभग वही अप्रिहेंशन जो है उन्होंने भी जताया था चर्चा के द्वारा, तो इस पे मैं थोड़ा सा बी हैप्पी इफ यू कैन थ्रो लाइट ऑन दैट। और दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर जो है, खासकर AI के चलते जो है, जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है जिसमें हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता था, उसकी हालत खराब है। और दूसरी बात ये कि ये हम जो है मैन्युफैक्चरिंग को हमको फोकस ज्यादा करना चाहिए इन द लॉन्ग रन, ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए
0: जी
2: अपने जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको, ये क्या इज इट नॉट हाई टाइम कि हमारे स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे।
0: मैं समझ गया आपके आपके राय और विचार का स्वागत है, सम्मान है। अब रहा सवाल कि क्या करना चाहिए रणनीतिकारों को कि मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ावा देना चाहिए, हमारी सरकार और हमारे नीति नियंता इस पे लगातार इस बात
3: फोकस है,
0: काफ़ी बात करते रहे हैं, तो इसलिए मुझे उसमें और कुछ अतिरिक्त जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहला प्रश्न था कि क्या जो हमारे DFIs हैं वो FPIs के हाथों से खेल रहे हैं। ये देखिए, ये एक व्यक्तिगत मत किसी का हो सकता है और मुझे मालूम नहीं कि उस समय मैं था या कोई और था। खैर, मेरी अपनी राय ये रही है कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने तौर तरीके हैं, उनकी अपनी सोच होती है, और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है भारतीय शेयर बाजारों के लिए कि बीते कुछ समय में हमारे जो DFI हैं वो एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि बाजार में उस तरीके की गिरावट हमने नहीं देखी जो किसी एक समय में होता था। पहले कहा जाता था कि अगर एक विदेशी संस्थागत निवेशक को छींक भी आई तो पूरे बाजार को बुखार लग जाता था, अब वो स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है।
3: जितेंद्र जॉइंस अस नाउ फ्रॉम जयपुर, वार्म वेलकम जितेंद्र।
4: हाँ, थैंक यू सर। सर थोड़ा सा चिंतित हूँ IT सेक्टर को लेके, निफ्टी 50 के 2-3 IT सेक्टर है जिसमें एक दो में मैं लेके रखा हूँ, तो सर क्या ऐड कर लूँ, लंबे समय के लिए लिया हूँ, इतनी निफ्टी 50 का शेयर है और IT का तो ऐसा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो AI को लेके करता ही होगा वो।
0: देखिए जितेंद्र जी, अगर अभी आपको याद होगा इन्फोसिस के जो हमारे अमूमन हम लोग कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक खास कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री का एक्सपोजर था। तो जो इन्फोसिस के नंदन नीलेकणी साहब ने कहा कि हमारी कंपनी जो है वो AI में के दौर में भी जो है वो बनी रहेगी, हमारी कंपनियों की ज़रूरत रहेगी, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय IT कंपनियों के लिए है। और ये बात अगर NVIDIA के भी अगर आप देखें CEO का, उन्होंने भी कहा था कि जब आपको कुछ ऐसा IT AI करना हो तो उसके लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी और ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल IT सेक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि थोड़े समय के लिए उसमें आप ज़रूर उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने और साल भर के बाद, कुछ समय के बाद, जैसा आपने खुद कहा कि लंबे समय के निवेश के तौर पर, तो स्थिति अच्छी नज़र आ रही है।
1: श्रोताओं, आप ठाणे से हमारे साथ गुरुनाथ जुड़ रहे हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, सवाल पूछिए।
5: नमस्कार मैडम
1: जी,
5: सुशील सर को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
5: सर, मेरा क्वेश्चन है मानसून के बारे में। सर जो हमारे देश में जो IMD ने जो कुछ प्रेडिक्शन की है कि बारिश से हमारे देश में कम हो सकती है, तो फिलहाल का जो नेचर बारिश का दिख रहा है तो ऐसे, मतलब मैं अभी महाराष्ट्र में देखो इस अब 27 तारीख है, इस तारीख तक 100-150 मिलीमीटर पाउस बारिश तो होती है, लेकिन अभी 15-20-25 मिलीमीटर भी नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब हमारे GDP पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिलहाल एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन हमारे GDP में होता है, और खाद्यान्न पे क्या इसका असर पड़ेगा। थैंक यू सर।
0: गुरुनाथ जी, देखिए मॉनसून की चिंता बहुत ही वाजिब सा है, और इस समय जो परिस्थिति है, जो IMD ने कहा है और तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि हमारे यहाँ सामान्य से भी कम बारिश रहने का अनुमान है, तो उसका असर निश्चित तौर पर कृषि पर पड़ने की आशंका है। आप

0: का दूसरा प्रश्न था कि कितना शेयर है जीडीपी में, तो 15% से भी नीचे ही है कृषि का अगर उसमें देखें। एक अच्छी चीज़ हमारे पास ये है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक हमारे पास काफ़ी अच्छा है, तो फिलहाल परेशानी खाद्यान्न की कमी को लेकर के नहीं है, लेकिन परेशानी इस बात को लेकर के है कि अगर मानसून सही नहीं रहा तो बुआई पे असर पड़ेगा या खरीफ की बुआई के ऊपर असर पड़ेगा, और उसका असर आपको रबी में भी देखने को मिल सकता है। तो रबी के लिए भी हमें नमी चाहिए होती है, अगर वो नमी कम रही तो रबी की बुआई और रबी की फसल पर भी असर पड़ सकता है।
1: उमेश जॉइंस अस नाउ फ्रॉम दिल्ली, अ वार्म वेलकम उमेश।
2: नमस्कार सिन्हा जी, नमस्कार मार्किन मंत्रा
1: जी।
2: मैं बहुत टाइम से आपका प्रशंसक रहा हूँ और ऑलमोस्ट डेली ऑफिस से निकलते हुए मैं सीरियल को सुनता हूँ, आपके विचारों को सुनता हूँ। मेरा क्वेश्चन है रीट और इन्विट को लेके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को लेके, सिन्हा जी क्या सजेशन देते हैं?
0: मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपने उमेश जी प्रश्न पूछा है, और ये बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि कन्वेंशनल सवाल नहीं है। रीट और इन्विट को लेकर के बहुत सारे जो हमारे श्रोता हैं वो चर्चा शायद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का रिटर्न उन्होंने दिया है और जिस तरीके से निवेशकों को उन्होंने पैसे दिए हैं, एक अच्छा विकल्प है। तो अभी कुछ एक सवाल हमारे पास जो आया था कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या असेट क्लास में उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक हिस्सा जो है आप रिट या इन्विट के जरिए आप जा सकते हैं, 5% ही रखें, चूँकि एक तकनीकी प्रोडक्ट है तो उसमें लगाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए आपका।
3: आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और निकटतम मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। और श्रोताओं हमारे साथ देव कुमार गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। देव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: धन्यवाद सर, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहूंगा। एक तो किसी की आज मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने ये बताया था कि शेयर मार्केट में सब कुछ लुटाने के बाद ही वो आदमी एक्सपर्ट बन पाता है, ये तो उनकी राय थी, इसके बारे में भी बताएंगे। और मेरे 30 लाख की कुछ पेमेंट है जो मैं एफडी में लगाना चाहता हूँ, और अब ये जो सही है कि मैं सारा का सारा एफडी में लगाऊँ या मैं शेयर मार्केट में जाऊँ। और दूसरा ये
0: जी देव कुमार जी, देखिए सब कुछ लुटा के शेयर बाजार में अच्छा बन सकते हैं, विशेषज्ञ बन सकते हैं, मुझे मालूम नहीं किनकी ये लोकोक्ति है, जिनकी भी है उनका सादर सम्मान करते हैं, अब उनकी अपनी सोच है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है कि मैं पैसे 30 लाख रुपये कहाँ रखूँ, देखिए आपने फिक्स डिपॉजिट रखिए और डाकघरों की बचत योजनाओं में लगाइए। शेयर बाजार में क्यों आप ये पैसा लगाना चाहते हैं, आपके पास जब मूल बचाने का बेहतर विकल्प मौजूद है तो बट्टा क्यों लगाना चाहते हैं?
3: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग।
5: मेरा सवाल है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 26A जो है उससे कौन सा डॉक्यूमेंट मैच करना पड़ता है, वो TIS है कि AIS है? थैंक यू।
0: रत्नाकर जी, AIS और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म 16 भी लेकर के रखें और दोनों को मिला करके देखिए, और आजकल काफ़ी कुछ प्रीफिल्ड आने लगा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: मूविंग ऑन, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन हैज सेड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड लाइज इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME सेक्टर। Addressing an event on MSME Day 2026, Udayami Bharat, in New Delhi today, he said that in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of first-generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high-quality standards.
6: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. This is not a word just for feel happy. This is the reality. That is what we understand from the great contribution of the MSME. Yes, MSME become the strongest pillar of our collective.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी

0: व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a 3-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. US Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration views India as one of the US's closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ

0: भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए TET प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria on a 3-day visit to Seychelles. In a social media post, Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. The Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India's and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister also visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Indian Navy's indigenously built survey vessel, large INS Ikshak, reached Port Victoria in Seychelles as part of her operational deployment to the Southwest Indian Ocean region. The Defence Ministry said that the visit coincides with the 50th National Day celebrations of Seychelles. It added that the visit underscores the enduring maritime partnership and long-standing friendship between India and Seychelles. During the port call, INS Ikshak will participate in the National Day celebrations and engage in a series of professional interactions with the Seychelles Defence Forces aimed at enhancing maritime cooperation and interoperability. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra today issued a statement on this issue. The statement says that the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust in its letter said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report with legal proceedings underway. A major paper leak involving the Maharashtra Teacher Eligibility Test, TET, was foiled in Bhiwandi a day before the scheduled examination, with the arrest of 3 alleged members of a paper leak racket. Police said the accused had brought the TET question papers from Delhi and were allegedly preparing to sell them in a deal worth around 1.5 crore rupees. Acting on

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்டு.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण

0: पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई

0: में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के दो विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा

मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आप उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बुलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन सेस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प शुरू होके फिर

0: वाहन अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना, जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता

0: रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार

0: और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय।

0: पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है अभी। तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में, जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
1: जी,
2: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुक करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन

फूल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि इस्तीफे पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी और ईंटों की गहनों का पूरा हिसाब किताब में मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंश को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के

0: in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight sets, straight games, 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Zhuofu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप, उत्तरी भारत में भी झटके महसूस किए गए। और फुटबॉल में लियांड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS रिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगी, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को होर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अंतरिम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
3: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा

0: दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तरी इराक में सुरक्षा सूत्रों ने एरबिल के पास हमले की सूचना दी। दक्षिणी मोर्चे पर लेबनान के नवातीह इलाके में इसराइल के ड्रोन हमले की खबर है। ये हमला इसराइल और लेबनान के बीच अमरीका की मध्यस्थता में हुए समझौते पर हस्ताक्षर के ठीक एक दिन बाद हुआ है। हिजबुल्लाह इस समझौते को पहले ही खारिज कर चुका है। इसराइल के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि लेबनान के कब्जे वाले जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति ने कहा कि भूकंप की तीव्रता मध्यम थी और इसके केंद्र के आसपास बहुत कम नुकसान होने की उम्मीद है।
2: जो गहराई को 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
1: विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों, सीमित राजकोषीय संसाधनों और खाद्य सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के कारण देश पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस पैकेज में उर्वरक आयात और चावल उत्पादन को समर्थन देने के लिए 30 करोड़ डॉलर शामिल हैं। नगद सहायता, आजीविका सहायता और आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति सहित आपातकालीन व्यय के लिए 71 करोड़ 30 लाख डॉलर आवंटित किए गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 2:30 शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अपने अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंडो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्र

0: Please stand by now for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं।

0: मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news red.

साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री

0: लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही थीं। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्बिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री

0: मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।

0: ये डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से TET प्रश्न पत्र लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ के सौदे में बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Makinam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said

அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்க

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया

0: पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

0: प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की दो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। परियोजनाओं के महत्व पर श्री वैष्णव ने कहा कि इन सुविधाओं में उन्नत मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा। कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हाटा पिपराइच रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 25 साल के विवेक सिंह, 31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर M. अभिषेक किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा यातायात प्रबंधन स्वच्छता बिजली पेयजल चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्तान जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल तीन पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry has said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July.

0: மழையில நனையறது மனசுக்கு இதமான விஷயம். ஆனா இந்த மழை நீரை சேமிச்சு வச்சோம்னா நம்ம மனசு மட்டும் கிடையாது, மண்ணும் நிறைவா இருக்கும்.
1: என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
2: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
3: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावे भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार।

0: और दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की

0: स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर नजरिया बदला है। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज के बजाय अच्छी सेहत पर और सिर्फ बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरी हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को सबसे अहम माना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल मरकापुरम जिले के किस्टम सेट्टीपल्ले गांव में संजीवनी डिजिटल नर्व सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि संजीवनी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्पिरर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maake Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani today at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with the UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement, CETA, into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK

0: இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பண்டிட் குமார் கந்தர்வா அவர்களின் பாட்டினை தொடர்ந்து ஜிதேஸ்வரி தேவி அவர்களின் தும்ரி கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत

यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए के तहत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लीनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा टीईटी परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की

0: से एक दिन पहले रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग अब भी लापता है। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2,000 से ज्यादा चार्टर उड़ानों के जरिए 11,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान की गई, जिससे चारधाम क्षेत्र में सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर कनेक्टिविटी मिली। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंधी चलने की आशंका प्रकट की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani today at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with their UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK Partners in Progress business plenary in London. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team SIT to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugle to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The Chief Minister also spoke to School Education Minister Dada Bhuse and Director General of Police Sadanand Date, directing that the strictest possible action be taken against all those involved in the racket. The move comes after Bhiwandi police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting three alleged members of the racket. Following the

0: இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार

बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य